रसायन केमिकल न मिसाई शुद्ध प्राकृतिक स्वास्थ्य श्री चितवन को अत्याधुनिक निर्माण उत्पादित शुद्ध तोरी स्वास्थ्य श्री।

0: मेडिकल अफिसर डाक्टर योगेन्द्र थापा र डाक्टर रोशन कुमार यादवद्वारा 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा उपलब्ध छ।
1: युनाइटेड अस्पताल राजगंगा 4 छात्राकुमार कपिल वस्तु सम्पर्क 076-550-2000 मोबाइल नम्बर 98-570-55-138।

कल भुलना इतिरक्षी खाए हिजो साझा खाए पची धनिया रायो के खातनी आजा भेटा हो नगी भेटा हो नगी।

0: नयाँ नेपाल निर्माणको आधार निरन्तर सुन्दै रहनुहोस् सामुदायिक रेडियो बुद्ध आवाज 89.6 MHz।
1: यति बेला मध्याह्नको 12 बजे।

0: अब जय के घर के दीवार लिपोती के उड़ाला।
1: मुस्कान बिटिया, ए मुस्कान बिटिया, घर के दीवार लिपोत के नहीं खत्म बाबा, खेत में काम करे वाले का नहारी लेके जाए के रहा
0: उड़ाला बम्मा।
1: ए अच्छा, हम नहारी बनाई के धाई दे थे, अब भी लेके चली जाओ।
0: ठीक है अम्मा। ओहो, यही देवरिया में दिल है, माटी से बंद कर दे पड़ा के काओ। हाँ, अब बंद कर दे थी।
2: अरे बापा रे अम्मा, हमें साफ दस लीज।
1: अरे बाप रे बाप, कहाँ दस लीज बिटिया?
2: ये हाथ में दस लीज अम्मा।
1: अरे अरे, क्यों क्यों? अरे है क्यों? हमने मुस्कान बिटिया का साफ दस लीज। अरे क्यों है, क्यों है?
3: अरे
1: कहाँ
3: हुई गोवा काकी?
1: देखो ना,
3: घबराओ काकी, ना घबराओ, बैठी रहो काकी, बल्कि मुस्कान का सीधा सुताव जाए और न हिलाव जाए।
1: बाबू
2: बेटा की
3: काकी, आप मुस्कान के पहिरा कपड़ा और घर गहना ढीला कह दिया जाए, न कस जाए के मेर से और हाथ के सूर्या खोल दिया जाए, दस लिया ओकर हाथ न चलावा जाए।
1: ओके बाबू, और सात दस लिया जगह के आसपास काट के इंजेक्शन से तान के या मुंह से सूच के विष निकाले के हो की?
3: नहीं काकी नहीं, सात दस लिया घाव के आसपास काटे जारे चूसे के काम नहीं करे चाहिए और कुछ नहीं खियावे चाहिए, पनियों नहीं बुझा गए ना।
1: तब तो गर्म हो रहा लाई के कपड़ा डस्टबिन की जगह पर लगाई दे तो बाबू।
3: वो नहीं काकी, घरेलू उपचार जैसे कि जहर मोहरा, जंगली घास पात और जड़ी बूटी के प्रयोग नहीं करे चाहिए, बुझा गए ना।
1: बुझे बाबू बुझे।
3: काकी बल्कि रमेश का मोटरसाइकिल लेके आवे कहा जाए ना, जल्दी से जल्दी साधन खोज के इनकी बहन दही जाए वाले स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाए, मिला तो मुस्कान का जल्दी ठीक हो जाए। कहा जाए तब तक हमरे के गांव से फोन एंटी वेनम केंद्र नजदीक पड़ता है, हम snakebitenepal.org के वेबसाइट में खोजित है। हाँ हाँ देव, snakebitenepal.org वेबसाइट खुली लगा हमरे के गांव से तो गुरु सिंह सर्पदंश उपचार केंद्र में सर्पदंश के उपचार कई बात है, मुस्कान का वहीं ले जाके पड़ा।
1: राकेश बाबू मोटरसाइकिल लेके रमेश आए गए
3: काकी, हम मुस्कान का नौ हिलाए के मोटरसाइकिल के सीट के बीच में बैठाए के अपने पीछे से पकड़ के बैठा जाए, जल्दी से जल्दी सर्पदंश उपचार केंद्र में पहुँचाई मिला तो मुस्कान का बताए सका जाता
1: जी। वो थे बाबू, चलो
4: याद रखा जाए, सात दस लिए के बाद मोटरसाइकिल स्वयं के भी बुलावा जाए, सर्पदंश उपचार केंद्र ले जाए के जान बचावा जाए, या कोनो सवारी साधन उपलब्ध न रहा अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी के फोन पता लगाए के फोन से सुझाव लिया जाए।
5: वही मेर से मरीजों का साफ से सावधान रह के चाहिए, मरीगवा साफ का धक्कप छुए और चलावे के नहीं चाहिए, कबो काल साफ मरीगवा है सोचा जाता है लेकिन वो दस सकत है, संभव हो तक धसे वाला साफ के फोटो खींच के डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी का दिखाए पर वो लोग का साफ विचालू है कि नहीं पहचान करके सही उपचार करे में सहयोग करते हैं,
4: सही समय पर उपचार किए पर सात दस लिए व्यक्ति का बचाई सका जाता है और इनसे हो सके वाला मृत्यु दर कम कर सका जाता है, सात दस लिया व्यक्ति का जल्दी से जल्दी उपचार केंद्र में ले जावा जाए, इनसे वह व्यक्ति के जीवन बचावे के मदद करत है, विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे के और नक्सलवे के उपचार केंद्र कहाँ है पता लगावे के खातिर आधिकारिक वेबसाइट www.snakebitenepal.org में जाए के आवश्यक जानकारी ले सका जात है।
6: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपाल का साथी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मित्रहरूका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
7: खुशीको खबर, विगत चार दशकदेखि भूतलमा निरन्तर सेवा दिँदै आइरहेको आलेजेन्ट जल अब कपिल वस्तुको चार नम्बर जितपुरमा यही श्रावण चार गतेदेखि शुभारम्भ भई सञ्चालनमा आइरहेको छ।
8: शुभारम्भको अवसरमा विशेष छुट थप जानकारीका लागि आले डेन्टल बाढगंगा एक जितपुर कपिल वस्तु एड्रेस बैंक नजिकै
9: सबै प्रकारका क्यान्सर उपचार शल्यक्रिया रेडिएसन सहित न्युक्लियर मेडिसिन सेवाहरू उपलब्ध छन्। नेपालको कुनै पनि ठाउँबाट क्यान्सरको उपचारका लागि यती एयरलाइन्स मार्फत दुई तर्फी निशुल्क टिकटको व्यवस्था गरिएको छ र उपचारका लागि पालन पर्दैन। विराट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल अन्तर्गत नेपालको नम्बर वन क्यान्सर हस्पिटल विराट क्यान्सर इन्स्टिच्युट विराट। थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 97 81 00 25।
10: होइन, कहाँबाट लिएर आउनुभयो यस्तो गहना? न डिजाइन राम्रो छ, हेर्नुहोस् त यो हार, यो बाला म त लाउँदिन है।
11: अब के गर्नु त, राम्रै त छ नि। कहाँ राम्रो डिजाइन छ, कुन सुन चाँदी पसल राम्रो हो, जानेको मान्छेले भने पो थाहा हुन्छ नि।
10: ल तपाईँ पनि बिहानभरि सम्झाएँ, न्यू अर्घाती ज्वेलर्स बारदुङ नगरपालिका चार जितपुरमा जानुहोस् भनेको होइन, भनेको सुन्ने होइन, आफ्नो मनले ल्याउने हो, पैसा मात्र सुहा।
11: लौ लौ त्यसो पनि जाम त नि न्यू अर्घाती ज्वेलर्सतिर, त्यही फेरि यी गहना कच्चा कुचुक्क पारेर तिम्रा डिजाइनका गहना लिँदा भयो त।
12: हजुर, विगत 27 वर्षदेखि सेवा दिँदै आइरहेको न्यू अर्घाखाँची ज्वेलर्स चार नम्बर जितपुर तौलिहाबाद रोड कृषि विकास ब्याङ्कको अगाडि आफ्नै निवासमा परेको जानकारी गराउँदछौ।
10: हामी कहाँ बिना रसायनको गरगहना अर्घ बमोजिम बनाउनुका साथै सुनचाँदी खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। ग्राहकहरूको सन्तुष्टि नै हाम्रो चाहना हो।
7: थप जानकारीका लागि न्यू अर्घाखाँची ज्वेलर्स चार नम्बर जितपुर तौलिहाबाद रोड कृषि विकास ब्याङ्कको अगाडि।
11: न्यू अर्घाखाँची ज्वेलर्स प्रोप्राइटर गोकुल खनाल, मोबाइल 98 00 79 85 26 र 98 472 87 90।
7: पाल्पा भैरव मेडिकल हल भूतवलको अत्यन्त जरुरी सूचना।
13: विगत 25 वर्षदेखि मुटु तथा छाती र छालारोगको सफल उपचार सेवा सञ्चालन गर्दै आइरहेकोमा यही असोज 25 गतेदेखि काठमाडौँ बीएनडी हस्पिटलका हाडजोड्ने नक्सा तथा लिगामेन्ट विशेषज्ञ र आम्दा अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा समेत बिरामी जाँच गरिने भएकोले उल्लेखित समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ।
7: ब्लड प्रेसर, सुगर, थाइराइड, मुटु रोग, छाती रोग, ग्यास्ट्रिक अल्सर, निमोनिया, चक्कर लाग्ने, लुटो, दाँत फुटले, दुबे, चाया, डन्डीफुर, पुरानो घाउ खटिरा, यौन दुर्बलता, सेतो पानी बग्ने, यौनाङ्गका घाउ खटिरा, कपालको रौँ झरिरहने, हाड जोड्नेका समस्याहरू, प्यारालाइसिस, रोग्नीहरू फुट्ने, नचल्ने, नसा च्यातिएको, ढाड चम्मर टुट्ने, मेरुदण्ड र घुँडाको समस्या, लिगामेन्ट च्यातिएको, भाँचिएको, हाड जोड्नेका विशेष अपरेसन र
13: पानी जाँच गरिने भएकोले उल्लेखित समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ।
7: ब्लड प्रेसर, सुगर, थाइराइड, मुटु रोग, छाती रोग, ग्यास्ट्रिक अल्सर, निमोनिया, चक्कर लाग्ने

0: अनुमोदन पत्र पाल्पा भैरव मेडिकल हल प्रमाणपट बुटवल साझा हस्पिटल को अगाड़ी
1: संपर्क नंबर
2: 071-524-905 071-555-905 मोबाइल 98-570-78-010

का नई माया गरम गरम हो हृदय की नई माया गरम गरम हो पत्थर जस्तो दिल मेरो पत्थर जस्तो दिल

पैसा खाओ पैसा लाओ पैसा कहीं पूरा कर पैसा खाओ पैसा लाओ पैसा कहीं पूरा कर पैसा खाओ पैसा लाओ पैसा कहीं पूरा कर आओ साथी।